FM बैंड 102.7 MHz ते सवेर दा आगाज परमात्मा दे नाम सिमरन दे नाल होएगा। प्रोग्राम सर्वन करोगे भक्ति रस नाल भरपूर वंदना। सात बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 7:02 ते जानकारी दे नाल भरपूर प्रोग्राम होएगा गुड मॉर्निंग जलंधर। प्रोग्राम होएगा अड्डी टप्पा। नौ बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 9:02 WhatsApp दे उत्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ

10:80 FM News Headlines और 10:02 ते हिंदी गीत संगीत देते आधारित प्रोग्राम होएगा गीत बहार। 11:00 FM News Headlines और 11:02 थोड़िया फोन इन प्रोग्राम के जरिए फरमाइशा पूरिया हो गया। प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का। सुनोगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और 12:02 ते प्रोग्राम सुनोगे होम स्वीट होम। एक बजे थारे मूड नू मेलोडियस करते हुए पल होंगे प्रोग्राम होएगा मिड डे मेलोडीज और 1:40 ते सारे प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे और 1:50 ते मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम इसे तरह जारी रहेगा। दो बजे तुम सुनोगे प्रोग्राम दिल आज शायर है। तीन बजे का प्रसारण तुम सुनोगे रेनबो दिल्ली तो यानी कि एफएम रेनबो दिल्ली तो प्रोग्राम सुनोगे रेडियो डॉक्टर। चार बजे एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम होएगा हेलो जलंधर। पांच बजे युवा वर्ग अपना प्रोग्राम लेके हाजिर होएगा प्रोग्राम होएगा युव वाणी। छे बजे जिंदगी नु हसीन बनाते हुए पल होंगे प्रोग्राम होएगा लव यू जिंदगी और 6:20 साड़ी प्रादेशिक चैनल तो प्रादेशिक खबर सुनोगे और 6:30 लव यू जिंदगी प्रोग्राम इसे तरह जारी रहेगा। सात बजे तुम सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और फिल्मी दुनिया की सैर कराता हुआ सिलसिला होएगा फिल्मी दुनिया 7:02 ते। आठ बजे तुम सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और 8:02 ते आज बुधवार है और आज का सिलसिला होएगा इन्फो टाइम्स। 9:00 तुम सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और 9:02 प्रोग्राम होएगा दिल चाहता है। 10:00 तुम सुनोगे शामे गजल और 10:03 प्रोग्राम होएगा एक प्यार का नगमा है। 8:00 आज से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से 6:05 हो रहे ने वेला हो रहा प्रोग्राम वंदना नु सर्वन करन दा। आओ प्रोग्राम दे सफर दा आगाज करिए मूल मंत्र दे नाल।

जात पात सब झूठ है, जात पात सब झूठ है, भरम पड़ी मत कोए, जाति नहीं जगदीश की, औरन की क्या होए, औरन की क्या होए।

जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे परमात्मा, जिस दे विच मेरा हित होवे, जिस तरह मेरा हित होवे, ओही करना, क्योंकि मैं तुहाडी इस आस्था नू, तुहाडी इस भक्ति नू हमेशा साथ रहांगा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल ਵਿਰਵੇ ਸਿਹਤ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਏ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਈ 2026 ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: दिल से दिल तक द कनेक्शन है और 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। और गुड मॉर्निंग जलंधर के सिलसिले के विच निशा तुहाडे नाल है और तुसी सारे जने मेरे नाल हो। न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ के जरिए भी बहुत सारे स्रोते जुड़े आए इस वे साढ़े नाल बने हुए ने। सो घरों बाहर निकलन लगे हो ट्रैफिक जड़ा आ हूँ थोड़ा जहा नॉर्मल रहा है इस वे, लेकिन जे थानू लगता है कि कोई छोटा जहा काम आ कोई छोटी जी चीज़ चाहिए, मान लो सवेर में दुध लेने जाना है ना, या फिर कोई होर अखबार लैन जाना है। कई बार असी अखबार नहीं जो लगवाया हों, असी अखबार लैन जाने या दुध लैन जाने या सवेरे सवेरे कोई चीज़ घट बच जाती है तो किराने वाले की दुकान पर जाने, असी अपनी 11 नंबर की बस कदे नहीं यूज करते, यानी कि असी पैदल जाना जड़ा है बिल्कुल पसंद नहीं करते है ना। पैदल जाना चाहिए सवेरे सवेरे तो अगर किसी चीज़ की जरूरत होवे है ना और वो घर के नज़दीक होवे लागे होवे फिर तो मैं कहनी हाँ पैदल जड़ा जरूर जाया करो। कोशिश करया करो कि अपने व्हीकल्स दे जिहड़ी यूज़ है वो ना करिए। सब तो वड्डा एक रीज़न एक तो थोड़ा पेट्रोल बचेगा, डीजल जो भी तुसी जिहड़ा

चार कदम मेरे नाल तुसी कदम देख नाल कदम मिला दे रो क्योंकि कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। लासी ब्रेकफास्ट हो रहा फिर ओके इसकी बड़ा याद है तुसी फिर ये सवाल ता मैं कहनी पूछो ही ना की तरिया की बनाया ये सवाल ना कर दिया जिनिया साड़ी रसोई घर दे विच काम करन वालियां भैणा हुंदियां ने ना उन्हां नूं ये सवाल पूछो ही ना वो तो परेशान हो जांदियां ने क्योंकि किसी नूं टींडे नहीं पसंद ते किसी नूं बैंगन की सब्जी नहीं पसंद ते किसी नूं माशाला रोज़ रोज़ आलू खा के ना ऐ लगता कि बस असी आलूआं वास्ते बने हैं। अरे नहीं पसंद तो कोई गल नहीं चूरी खाधी चूरी आहा चूरी का नाम सुन के ना बचपन तरोताजा हो मैं क्या बेबे ने कोसी कोसी चूरी जिहड़ी है ना रोटी लैनी और उन्हें चंगी तरह मधोली कदोली करके ना उहदी उहदे विच शक्कर पा देनी ते देसी घ्यो खूब सारा पा के देना ते चूरी बना के देनी। मैं कहनी मिठू तोता ही चूरी नहीं खाता सी जिहड़े साडे बचपन दे विच असीं वापस चले जाइए तो बचपन दे विच चूरी जिहड़ी है ना असीं कुट कुट के खांदे सी उहदे विच सानूं पूरा दा पूरा प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ मिल जांदा सीगा ते बिल्कुल सी। और साड़ियाँ जड़ियाँ पुरानियाँ परंपरावां दियाँ अनमोल गल्लां ने उही कहनियां ने कि चूरी जड़ी है ना वो वाकई दे विच बहुत ज़्यादा स्वाद हुंदी सी और कदे बना के देख लेना चूरी अज भी तुहानू उही स्वाद उही एहसास जड़े है तरोताज़ा हो जान के।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: Rainbow FM! Rainbow FM!
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल से दिल तक द कनेक्शन है। और 102.7 मेगाहर्ट्ज़, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं साडे नाल। बड़े हुए प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जलंधर। गुड मॉर्निंग जलंधर दा सिलसिला जिहड़ा है ना, जानकारी दे नाल भरपूर। पता क्या होंदा है, इहदे विच हर तरह की जानकारी मिलती है, फिर चाहे वह तुहाडी सेहत नाल जुड़ी होवे, फिर चाहे वह किसी होर चीज़ दे नाल जुड़ी होवे, यानी कि हर तरह की जानकारी जिहड़ी है हर मिल ही जाती है। लो जी फिर अज गल करदे आ इहो जिहे विशे दे बारे जिहड़ी सिर्फ एक गिणती नहीं है सगों देश दे भविख की नींह है। हाँ जी, जनगणना सर्वेखण। सब जानते ने कि जनगणना जिहड़ी है वह चल रही है ना। भारत की जनगणना की गल करिए हर 10 साल बाद जिहड़ी है जनगणना की जाती है, जिस देश की पूरी आबादी के बारे विस्थार के नाल जानकारी जिहड़ी है वह इकट्ठी की जाती है। ये प्रोसैस जिहड़ा हुंदा है सिर्फ लोगों की गिनती करना ही है, एहो जिहा प्रोसैस नहीं है, सगों उन्हां दी उम्र, उन्हां दा जेंडर, उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दा रुजगार, उन्हां दा रहना सहना, भाषा वर्गे अहम आंकड़े जिहड़े आ उहदे विच शामिल हुंदे ने। इह यकीनी बनाउण लई कि एक इकट्ठा कीता गया डाटा सही होवे, सरकार वल्लों खास तरह की ट्रेनिंग प्राप्त करन वाले गिणतकार जिहड़े आ, गिनतीकार जिहड़े आ, उह तैनात।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

तमिलनाडु विच जोसफ विजय दी अगवाई वाली टीवी के सरकार नू अज विधानसभा विच अपना बहुमत साबित करना है। राज विच सियासी गतिविधियां तेज हो गईयां ने। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी अज पुडुचेरी दे मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। सरकार ने सोने ते होर कीमती धातां दे दरामदी महसूल वधा दित्ता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले दे संबंध विच शुभम खैरनार नू हिरासत विच लिया। सरकार ने कुल घरेलू उत्पाद जीटीपी दे सालाना ते चौथी तिमाही लई अनुमान जारी करन दी तारीख विच सोध करदियां हर साल मई दे आखरी कामकाजी दिन तो बदल के 7 जून कर दित्ती है। महाराष्ट्र दे सांगली जिले विच एक धार्मिक समारोह दौरान भारी मीह ते नेरी दे चलदियां कंध डिगण कारण 6 श्रद्धालुआं दी मौत हो गई ते लगभग 15 होर जख्मी हो गए। माता भद्रकाली जी का मेला अज कपूरथला के पिंड शेखूपुर विखे पूरी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। भारत विच दक्षण पश्चिमी मानसून दे इसे हफ्ते आउण की संभावना है। भारत का लक्ष्य फोगाट उजबेकिस्तान के ताशकंद विच एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप विच 75 किलोग्राम वर्ग की फाइनल विच पहुंच गया है। आईपीएल क्रिकेट विच अहमदाबाद च गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद नू 82 दौड़ा नाल हरा दिता है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼।

म्यूजिकली आवाज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो और रेनबो तो फिलहाल टाइम हो गया जी 10:45 टाइम में तुहानू दस देता है और टाइम दे अकॉर्डिंग तुहानू पता ही है कि इस टाइम तुहाडी गड्डी भी अपने काम वाल जा रही है। बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी पहुँच चुके ने और जो नहीं पहुँचे सफर दे विच आ गए ने, है ना जी। सफर की शुरुआत हो गई है ते फिलहाल रेनबो ते भी अगले प्रोग्राम की अगले सफर की शुरुआत हो गई है जी। मेरे नाल कौन है आज जुड़े हुए? सो फिलहाल स्टूडियो दे विच आ गई है जी रिचा ते मेरे वालों सभी दोस्तों नू एक बारी प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब ते मैं क्या जी की हाल चाल तुहाडे। तो देखो दिन की शुरुआत एफ एम रेनबो के नाल कर ही चुके हैं और बहुत सारे प्लान्स होंगे आई हो थिंक होंगे ही है। देखो हर एक दिन के आप बहुत सारे प्लान्स बना लेंगे एक दिन पहले कि कल असी ये चीज़ा करनी है। सो तुसी देखो आज दे जो भी लिस्ट जुड़ी बनाई हुई है टू डू लिस्ट दे विच तुसी की कुछ करना है ये तुसी डिसाइड कर लो। फिलहाल मेरा तो जी पक्का है कि 10 to 2 PM तक तुहाडे नाल करना है ये सफर इंजॉय और 10 PM दे ही प्रोग्राम गीत बहार जी कर रहे हैं जी आप शुरुआत, है ना जी। चलो फिर इंतजार किस गल का, गीत बहार है और गीता दी बहार लेके आ गई है जी रिचा एक बार फिर।

सो चाहत के दो पल भी मिल जाए दुनिया भी ये भी कम है क्या। आ गई चाहत दे दो पल, खुशियां दे दो पल, अपने नाल गल्लां बातां करन दे दो पल। और ये जिहड़े पल हुंदे ने ना वाकई साडे लई बहुत खास हुंदे आ जदों असीं अपने नाल बह के है ना उन्हां नाल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वधिया लगता है जदों बाजार जा रहे हैं या फिर गपशप कर रहे हैं, चाह ते मिल रहे हैं, उस सोहणे सोहणे पल, उस सोहणी सोहणियां यादां है ना कैमरे च कैद कर लैणियां चाहीदियां ने, क्योंकि अक्सर ये यादा ही होंदिया ने जो जो समा लंघ जाता ना तो उस तो बाद ये जो पल होंगे ना सानू बहुत याद आते हैं। और हो सकता है तुहाडे कोल भी इन्हां पलां वाली, इन्हां मूमेंट्स वाली, इन्हां यादा वाली एक बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हो। मेरा मतलब है कैमरे के बहुत सारिया फोटोज हो। चलो फिर उन्होंने तुम करो इंजॉय और प्रोग्राम नाल ही नाल गीत बहार भी कर रहे हो मेरे यानी रचा के नाल। इंजॉय, स्टे ट्यून्ड।

कभी कभी चुपके से रोना है जरूरी। वैसे वाकई देखो, हर टाइम स्माइल करती रहिए या फिर कहिए कि आप तो खुश हो, सानू कोई टेंशन नहीं है। इधर तक देखो कोई इंसान नहीं है दुनिया से जिन्हें कोई टेंशन ना हो या प्रॉब्लम्स जो खिले हो या ना हो, है ना। लेकिन ठीक है, समटाइम्स की होंगे कि आप भी ना अक्सर जो दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है ना उदो अपना गुबार जड़ा ना कड लेना चाहिए है, किसी के सामने ना सही, चलो कल ही सही, थोड़ा जा रो भी लेना चाहिए है। होएगा कि देखो दिल हल्का हो जाना ये नाल और थोड़ी जी ना तसली भी मिल जाती है अपने आप में। जो आप बहुत हौला जहा महसूस करते हैं ना तो फिर सामने वाले की गल भी समझ आती है, तो अगे जो प्रॉब्लम्स ने ना उन्होंने सल्यूशन किमें कड़ना है वह भी समझ आता है। इस करके स्माइल करनी है, खुशियाँ तो है ही है, खुशियाँ का खजाना बनता लाइव रेडियो स्टेशन 102.7 FM रेनबो। सुन रहे हो जी तुम मेरे।

दीदार करते हैं, है ना, तो कितनी खुशी मिलती है सानू। तो कई बार की होंगे इंतजारी बहुत लंबी पै जाती है, बट कोई टेंशन नहीं है, जिन्नी लंबी इंतजारी है तो जो उसका रिजल्ट आना है ना, जो वो चीज़ साढ़े अखा के सामने आनी है तो सू बहुत खुशी भी मिलनी है, और इंतजारी फिर पता भी नहीं लगना कि आप किस चीज़ लिए कितना इंतजार किया है। और हो सकता है तो लाइफ से भी किसी चीज़ का इंतजार चल रहा हो, तो कोई टेंशन नहीं है, खत्म होएगा, बहुत जल्दी इंतजार खत्म होएगा। जी सौदेबाजी है ना थोड़ी इंतजारी के नाल, वह रब नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अगले गीत आप जरूर करा जी सौदेबाजी। स्टे ट्यून्ड।

दिल की सौदेबाजी था मैनू पता नहीं, पर हाँ मार्केट जाके दुकानदार अंकल को लो, अंकल जी जो सौदा लैन लगते हैं, अंकल जी बहुत सारा सौदा लै लिया, एक पॉलीथीन होर दे दो, एक होर दे दो, एक होर दे दो। देखो कितनी सारी पॉलीथीन आप इकट्ठी कर लें है ना, जो सौदा लैन बाजार जा रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा जहाँ आपको चाहिए ना कि आप थोड़ा जहाँ अवेयर हो जाइए, कोई भी है ना बैग या फिर कोई भी चोला लैके करो ही निकलिए, सो दैट जड़ियाँ पॉलीथीन की दुकान असी अपने घरें सजा के रखी है ना। हाँ थोड़ा जहाँ मैं तुम्हें कह रही हाँ, समझ जाओ, इस करके अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अब आप इस टॉपिक पर गलबात भी करा, 11 to 12 प्रोग्राम पंजाबी तड़का के तड़का लगावे थोड़ियाँ फरमाइशा के नाल ही नाल, करना की है कुछ नहीं करना, गलबात करा। फिलहाल चल रहा है जी 10:35 45 सैकेंड प्रोग्राम गीत बहार, और अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ से। स्टे ट्यून्ड।

कुछ करते हैं और रेड सिग्नल पे गड्डी अपनी थोड़ी जी रोकते हैं जी, इंतजार करते हैं और सिग्नल दी ग्रीन होण दा है ना जी। पहला बात तो चलदिया ही रहनगियां, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन्हों जरूर फॉलो करना चाहिए। फिलहाल फॉलो कर रहे थे प्रोग्राम और नाल ही नाल मैनू यानी रचा और मैंने तो फिलहाल 2 बजे तक फॉलो करोगे और प्रोग्राम गीत बाहर आप अगले गीत के नाल टाटा बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन रचा कितने भी नहीं जा रही है, मेरा तो थोड़ा साथ बनया हुआ है। फिलहाल गीत बाहर थोड़ा जहा इस गाने की बीट के नाल भी इंजॉय करो, वाइब बना लो पूरी, क्योंकि वाइब मैं इस करके सैट कर रही हूँ। 11 बजे ही प्रोग्राम पंजाबी तड़का का हो जाएगा समा और तुम जुड़ोगे मेरे नाल 11 से 12 और अपन गल्ला बातें फरमाई शाला के पहुंच जाओगे FM रेनबो फोन के जरिए। सो स्टे ट्यून्ड विद FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: ਸੁਣ, ਅਗਲੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੈਲੋ
1: हेलो।
0: ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ।
1: यहाँ वहाँ क्या साथ, समुंदर पार नहीं मिलता। लोगों को रब मिल जाता है लेकिन FM जैसा यार नहीं
0: ओए
1: मिलता।
0: होए, ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग कर दो थोड़ी जी, आ गई आवाज। कौन दोस्त गल कर रहे हैं
1: अर्जन सिंह पिंड माले वाला जिला फिरोजपुर।
0: जी? अर्जुन सिंह जी, की हाल चाल है?
1: ठीक ठाक। नाले
0: बड़े
1: मैंने
0: खुश
1: दसा
0: नजर आ रहे
1: साल
0: हो अज।
1: आज से 10 सालों बाद 150 साल पूरी होगी मेरी ये।
0: अच्छा, मतलब 10 साल लग गए तुहानू ए नंबर नू, है ना, इस
1: हाँ
0: अचीवमेंट
1: जी,
0: नू। हो, मैं कह रही हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए है ना जी। चलो चलो, शुरू हो जाओ, जिन्हें भी दोस्त बैठे हैं। देखिए, मैं ऑडियंस बुला रखी है तुहाडे लई।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ये नाल गैप गैप पा के लाउना ना, तां फिर इन्ना वक्त लग गया जी।
0: बड़ा रिकॉर्ड करते हो तुसी, हैं की कुछ खांदे हो? बादाम ज्यादा खा ले लग रहा है मैनू, इन्ना याद रह गया तुहानू।
1: बादाम नहीं, रेनबो दे नाँ दी डायरी लाई हुई है, नोट कर ली थी जब भी कॉल
0: अच्छा
1: लगे।
0: अच्छा ते पहली बारी कदों लगी सी?
1: 2015 च लगी सी, मनदीप मैडम सी उदो।
0: अच्छा, 2015 च लगी सी ते हुण चल रहा जी 2026,
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: इन्हां सालां दे विच तुसी 150 दा जिहड़ा एक नंबर है ओह अचीव कर लिया। वाह वाह वाह अर्जन
1: हाँ
0: सिंह
1: जी।
0: जी, मैं कह रही हाँ फैन हो रेनबो दा ते कोई तुहाडे वर्गा। मेरा दिल कर रहा है तुहाडे लई एक वारी होर मैं क्लैपिंग करा देवां। चलो फिर।
1: नाले नाल मैं गाने नोट करदा रहना, केड़े नहीं प्ले होंदे ओह ही प्ले कराई देने। हाँ
0: अच्छा ठीक है,
1: जी, हाँ जी।
0: मतलब
1: रिपीट कट 2015 वाला रिपीट गाना नहीं आया मेरा जी।
0: मेरे ख्याल तुहाडे लई ओह डायलॉग बनिया होया, चुन चुन के, चुन चुन के गाने लगाऊंगा। है ना, चलो वधिया है, इसी तरह होना चाहिदा, और प्यार तुहाडा बनिया रहे रेनबो दे नाल, होर सानू की चाहिदा है। होर मैं तुहाडे नाल अज कोई गलबात नहीं करनी है, मैं भी बहुत खुश हाँ, तू भी खुश, तुसी भी बहुत खुश हो। चलो गाना सुना दो फिर, केड़ा सुनना है तुसी?
1: रंजीत राणा ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਜਣਾ।
0: ठीक है जी, ठीक है। चलो, कॉल करने के लिए शुक्रिया, ते इंजॉय
1: थैंक
0: करो
1: यू
0: तुसी
1: मैडम।
0: अपनी फरमाइश नू, और आपा भी मिलके इन्हां दी फरमाइश जिहड़ी है उसनू इंजॉय कर दें, ते मुड़ के एक होर दोस्त नू शामिल करांगे। 0181 23 42 174 नंबर नू डायल करके स्टे ट्यून्ड।

0: So once again, welcome back to 102.7 FM Rainbow Day. Enjoy कर रहे प्रोग्राम पंजाबी तड़का और रिचा थोड़े नाल जुड़ी हुई है ते मेरे नाल अगले दोस्त कौन जुड़े ने हेलो
1: मैडम जी सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी की हाल चाल
1: हाल चाल बहुत बढ़िया जी हरविंदर बिट्टू पिंड गिल्ला जिला जलंधर तो बोल रहे हैं जी
0: ओ वाह जी वाह नाम दे नाल एड्रेस मुफ्त मुफ्त मुफ्त
1: बिल्कुल बिल्कुल एक भाई
0: ठीक है हरविंदर जी की हाल चाल है
1: गड्डी
0: लेके निकल दो
1: दूर जाना लागे जाना पिंड फिर मैं पैदल ही जाना
0: पैदल पैदल ही जाना चाहिए मैं उही गल कर रही हाँ कि देखो सानू ना आदत हो गई है कि अब आप बस फटाफट अपनी गड्डी कट लें कि मतलब नेड़े भी जाना होगा ना कि पैदल नहीं चल रहा कोई है ना तुरदे नहीं
1: पड़े नहीं वो तो बहुत हैबिट ज्यादा बढ़िया नहीं ये है थोड़ा चलना फिरना जरूरी है अपना क्योंकि शरीर नु तो आई अपने सारे कुछ ताकत मिल गई थोड़ा फिरांगे शरीर चलता रहना चाहिए
0: अच्छा बिना वजह चलते हो तुसी मतलब कहंदे कि वॉक कर रहे हो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तुसी करते हो कि नहीं
1: बिल्कुल डेली वॉकिंग करी दी और डेली गुरु का जाएगा
0: अच्छा चलो बहुत वधिया बहुत वधिया
1: जी सवेरे 5:30-6 बजे ही काम हो जाता है
0: ठीक है ठीक है ठीक है होना भी चाहते देखो छोटियां छोटियां आप आदतों की गल कर रहे सी आज और इहदे विच एक बहुत जरूरी है ना आज के टाइम च मैं देख रही हूं कि बस माड़ा जा भी सारे तो तुरिया नहीं जाता है ना क्योंकि जेड़ा 50-60 वाली उम्र है वो असि हुणी बना के बह गए अपनी कि साडे कोलों नहीं तुरिया जाना
1: असि सेवा भावना वास्ते असि एक अपनी पिंड मेडिकल टीम बनाई है जेड़ी कि गरीबां दी मदद करदी है साडी असि

102.7 FM Rainbow और Rainbow दे 12:50 चलो चलो मैनू पता है इस टाइम ते ना जिन्हें भी दोस्त सुन रहे ने ना उन्होंने पता है कि रिचा आ गई है और हुण ये बड़े ही वधिया वाले कमाल दे कुछ DIY तरीके कुछ हैक्स है ना जी कुछ टिप्स लैके अज आएगी प्रोग्राम च क्योंकि प्रोग्राम का नाम है जी होम स्वीट होम और तुहानू पता ही है कि जो भी मैं आनी हाँ हमेशा ही कोशिश रहती है कि छोटे छोटे कुछ स्मार्ट तरीके जिदे नाल आपां भी थोड़े जे स्मार्ट बन जाइए और दूजिया नाल शेयर करके कहिए कि हाँ ये चीज़ तो मैं रेनबो ते सुनी सी तुहानू पता है इस चीज़ नाल ये चीज़ां हुंदियां ने है ना बहुत कुछ हुंदा है लाइफ दे विच और लाइफ च है कि छोटा जिहा साडा घर सोहणा जिहा घर दे विच की कुछ चलता है गार्डन की गल करिए किचन की गल करिए है ना और घर के एक मैंबर की गल करिए भावें छोटे बच्चे हो या फिर कोई भी हो सारे मिल के ये जी सोहनी जी एक साड़ी है होम है ना वो स्वीट होम बन रहा है सो इस टाइम आज भी थोड़े लिए बहुत कुछ मैं खास लेके आई हाँ जिमें कि शुरुआत करांगे आपां कुछ छोटे छोटे चेंजेस मैं शुरू तो ही अज कह रही हाँ जदों की मैं इस जर्नी दे विच तुहाडे नाल जुड़ी हाँ कि कुछ चेंजेस जिदे करके खर्चा जिहड़ा ना साडा वध जांदा है बीमारियां सानू घेर लैंदियां ने हैलो हाई करदियां ने सो उन्हां तों आपां बचांगे कुछ स्मार्ट

0: ठीक है, जिन्हें करके अब अपनी किचन नू भी स्मार्ट बना लेना है। और बच्चियां बच्चे क्यों जिद्दी हो रहे हैं, उन्हें नाल किवें डील करिए, आज इहदे बारे भी आपां थोड़ी जी गलबात करांगे। होर भी बहुत कुछ है खास। फिलहाल मैनू कोई आवाजा मार रहा है, हाय हाय हाय, पता नहीं कौन आवाजा मार रहा है।
1: इससे दुआवां लगियां,
0: दुआवां तो लगनियां ही चाहीदियां,
1: रब तो मैं अज भी लड़ियां।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, लड़ना किसी दे नाल नहीं है। तुसीं इस गाने नू एंजॉय करो रिचा आरियस गीत तो बाद। ठीक है जी, पेन कॉपी नोटबुक जो भी तुसी कढ़ना है कढ़ के बह जाओ आराम नाल। स्टे ट्यून्ड।

उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, आ गया है जी स्टॉपेज और रिचा भी आ गई है और कह रही हूँ कि तू है कहाँ, मैं हूँ FM रेनबो दी जिहड़ी गलियां ने ना उन्हां गलियां दे विच बैठी हुई हूँ, स्टूडियो दे विच बैठी हुई हूँ और आप अज की कर रहे हैं जी, ग्रोसरी लिस्ट नूं अपनी अपडेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के नाल, बहुत जरूरी है। सो आपां की करदे हां कि जिहड़े कि बच्चे जिद करदे हैं कई बार है ना, चिप्स लै लिए, ये जिहड़े फ्रोजन फूड हुंदे ने उन्हां नूं लै लिए और बजाए जाने कि किन्ने ही ज़्यादा, देखो फ्रैश तो वो चीज़ा है नहीं, फ्रोजन चीज़ा ने या फिर चिप्स के पैकेट हो गए, ये चीज़ों के बजाय आप क्यों ना छोटे बच्चों लिए भुने जिहड़े चने हुंदे ना, पुजे हुए चने वो खाइए, उन्होंने खवाइए, मखाने के पैकेट लैके आइए। हाँ थोड़े जे मखाने महंगे पै सकते हैं बट सही है, वो चीज़ हेल्दी है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और किन्नी चीज़ा मखाने के विचार किन्ने पोषक तत्व होंगे ने और हेल्दी भी होंगे ने, है ना, बच्चों उन्होंने आप फ्राई करके या क्रिस्प करके हल्का जहा नमक लगा के भी दिए और बहुत स्वाद भी लगते हैं। एक तो यह बदलाव हो गया, दूजा आप जो भी रिफाइंड शुगर हो गए या ऑयल हो गया उन्होंने थान पर क्यों ना आप जी एक धागे वाली मिश्री होंगी है वो वरतों कर सकते हैं लिस्ट के थोड़ी जी जगह दीए, या फिर गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, देसी शक्कर का इस्तेमाल कीजिए, है ना जी। और शुरुआत कर रहे हैं अपनी नाश्ते दी तो परौंठिया की थान पर कदे कदे ओट्स भी लै लेना चाहिए, दलिया खा लेना चाहिए और एक दिन ना खिचड़ी भी जरूर बना लेनी चाहिए। और जिहड़ियां दालां ने ना, दाल जो भी आपां दाल बना रहे हैं लैके आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि उन्होंने थोड़ी देर पहला ही पे के रख दिते, मतलब पानी दे विच रखिए, है ना, सो दैट वो जल्दी पकदी भी है और वधिया भी हुंदा, टेस्टी भी हुंदी है। और राइस आप खा रहे हैं तो इस बार ग्रोसरी लिस्ट के जो वाइट राइस लिखे ना उन्होंने थान पर आप कर सकते हैं, मिलट्स लैके आ सकते हैं या फिर ब्राउन राइस लैके आ सकते हैं। सो देखो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के आप बदलाव करांगे उस लिस्ट नूं, ग्रोसरी लिस्ट नूं अपनी अपडेट करांगे तो ही तो साड़ी हेल्थ जी है वो भी तो अपडेट होएगी। फिलहाल मैं अपडेटा अगले गाने के नाल इंजॉय करांगे जी, प्रोग्राम होम स्वीट होम का अगला गीत, उस तो बाद मिल रही थानू होर भी बहुत सारिया चीज़ा थोड़े लिए लैके आई हूँ जी, स्टे ट्यून्ड।

सो 12:34 ते 25 सेकेंड और होम स्वीट होम प्रोग्राम कर रहे हो जी मेरी यानी रिचा दे नाल इंजॉय। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जी छोटे छोटे कुछ तरीके और कुछ टिप्स कुछ DIY हेल्प जेकर सानू टाइम नाल पता लग जाना तो दिल करता अरे अरे अरे यार ये तो बहुत वधिया चीज़ हो गई। तो ये चीज़ है जी हुण अपनी किचन दे नाल जोड़ी लंच की तैयारी चल रही है और देखो लंच दे विच अज की कुछ खास तुहाड़े मेन्यू दे विच बनिया होया है तुसी देखो। और लंच हो डिनर हो है ना कुछ भी हो एक चीज़ है जो साड़ी रोटी दे विच साड़े खाने दी थाली दे विच ना सानू नज़र आ ही जाती है एंड दैट इज़ रोटी दे नाल जेड़े राइस बने हुए

0: थक।
1: और इस खूबसूरत गीत भी है, आवाज भी नहीं खूबसूरत है। तो ये तो बात की करिए आपा, आपा कुछ नहीं कर रहे आज, मैं भी थोड़े नाल बहुत सारे खूबसूरत और कह लो कि DIY कुछ तरीके हैक्स टिप्स ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। हूँ थोड़ा जहा इस चीज़ नू ब्रेक देने, ब्रेक देना और लेना बहुत जरूरी है लाइफ च, और ब्रेक दे रहे हैं जिस प्रोग्राम नू

102.7 FM Rainbow और 102.7 MHz से जलंधर के दोस्तों के नाल नाल 103.6 MHz से आकाशवाणी अमृतसर के दोस्त भी साढ़े नाल इस टाइम जुड़ गए ने जी और उन्हों का साथ साढ़े नाल रहेगा दोपहर के 3 बजे तक। ये तुहानू पता ही है सारियां नू कि इस टाइम चलो जी थोड़ा जिहा मैनू भी ना लगता है कि मैं भी शायद किसी गीत नाल गुनगुना देवा क्योंकि ये टाइम जिहड़ा ना दोपहर का हुण देखो 1 बजे पता ही है सानू सारियां नू कि कुछ मेलोडियस जिहा होण दा टाइम है और प्रोग्राम मिड मेलोडीज़ लैके हाजिर है जी रचा एक बारी फिर। पर अज इस मिड मेलोडीज़ दे विच ना आपां थोड़ा जिहा एक ट्विस्ट लैके आ रहे हैं। वो ट्विस्ट की है ना जी मेलोडियस गीत तो आपां सुनदे हां ते अज जिन्हां दी मैं गलबात करांगी उन्हां दा एक्चुअली कोई शायद मेलोडियस गीत सानू सुनन नू मिले बट इन्हां दा जिहड़ा एक गीत गाउण दा एक तरीका है एक स्टाइल है वो अज दे टाइम च वी सानू सारियां नू बहुत ज़्यादा पसंद है। किन्हां दी गल कर रही हां और अज दे जिहड़े गीत आपां इंजॉय करांगे मिड मेलोडीज़ च उस हर एक गीत दे विच इन्हां दी आवाज़ सानू सुनन नू मिलेगी। सो कौन है शख्सियत इस गाने नू सुन के जरा थोड़ा जिहा अंदाज़ा लगाओ उस तो बाद मिल रही हूँ तुहानू सिर्फ इत्थे ही स्टे ट्यून्ड।

केना नाल मुलाकात की थी। श्री जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच दस्सिया कि दोवां नेतावां ने बाजारां ते स्रोतियां विच भिन्नता लियाउण, तरजीही वस्तां दी दरामद नूं वधाउण अते सेवावां दी आर्थिकता नूं सुचारू बनाउण लई दवल्ले सहयोग नूं मजबूत करन ते चर्चा कीती। श्री फ्रांसिस्को कल तों शुरू होण वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियां दी दो रोज़ा मीटिंग विच शामिल होण लई भारत आए ने। इंडोनेशियाई विदेश मंत्री सुगियोनो आज सवेरे नवी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। वह कल तो शुरू हो रही दो दिन ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। इस मीटिंग की प्रधानगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स के विदेश मंत्री और मैंबर से भाईवाल देशों के वफद के मुखी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुलाकात करेंगे। मीटिंग दौरान ब्रिक्स मैंबर देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के आलमी क्षेत्रीय मुद्दों से विचार वटांदरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के इच्छुक लोगों को इस महीने की 19 तरीक तो पहला अर्जी देने की अपील की है। इस यात्रा लिए रजिस्ट्रेशन छेती ही बंद हो रही है। इच्छुक बिनेकार अधिकारित वैबसाइट kmy.gov.in राही होर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र से समाजवादी पार्टी के मुखी अखिलेश यादव के मतरे भरा प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में देहांत हो गया है। उन्होंने लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया जिथे उन्होंने मृतक ऐलान दिया गया। उन्होंने पत्नी अपर्णा बिश यादव बीजेपी के मैंबर ने मौजूदा समय में राज महिला कमीशन के उप चेयरपर्सन ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के देहांत से डूंगा दुख प्रगट किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतीक यादव का अचानक देहांत बेहद दुखदाय। मुख्यमंत्री ने उन्होंने परिवार प्रति डूंगी संवेदना प्रकट की थी। नीट यूजी प्रीख्या के प्रश्न पत्र के कथित तौर पर लीक होने के मामले की जांच लई केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की एक टीम जयपुर पहुंच गई है। टीम ने राजस्थान पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप SOG वालों हिरासत में लए गए कई लोगों तो पूछगिछ की है। जांच के हिस्से वजो SOG ने सीकर आले दुआले के इलाकों में भी लोगों तो पूछगिछ की है। IPL क्रिकेट में अज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होएगा। यह मैच शामी 7:30 शुरू होएगा। बीती रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम च गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद नू 82 दौड़ा नाल हरा के अंक सूची में सिखरला स्थान हासिल कर लिया है। आखिर विच इस बुलेटिन दियां खास खास खबरां एक बार फिर। तमिलनाडु विच सी जोसफ विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु वेत्री कड़गम सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा विच भरोसे का वोट हासिल कर लिया है। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी ने अज रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। सरकार ने सोने ते होर कीमती धातां ते दरामदी महसूल वधा दिता है। पंजाब सरकार वालों रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा होने तो बाद सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों लिए राखवकरण नीति बनाई जाएगी। तो विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के इच्छुक लोगों को इस महीने की 19 तरीक तो पहला अर्सिया देने लिखा है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होएगा। नमस्कार।

सो हरी ओम हरी और ये आवाज़ तुझे सुन रहे सी जी उषा उथुप जी दी आज गाने उनां दे असी इंजॉय किते प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ च और आई होप कि तुहाडा वी इहदे विच कोई ना कोई तां एक फेवरेट वाला ट्रैक जो तुसीं इंजॉय किद्दां होना है और उसनूं इंजॉय करके मैनूं भी याद किद्दां होना है तो फिलहाल मैनूं रिचा नूं दिओ इजाजत मिलांगी तुहानूं फिर किसी दिन होर FM रेनबो ते जांदे जांदे आपां एक होर जिहड़ा बहुत ही वधिया ट्रैक है इहनां दी आवाज़ दे नाल नाल बब्बी लहरी जी दी भी आवाज़ है उसनूं आपां इंजॉय करदे हां जी स्टे ट्यून्ड विद FM रेनबो दिल से दिल तक

नमस्कार दोस्तों, तुसी सुन रहे हो FM 102.7। मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल, स्रोते बड़ा प्यार करते ने एंड साडे लिए उन्होंने बहुत कुछ लिख के भेजा है। सब तो पहला लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी कह रहे ने कि मैंने आज तक, अच्छा हिंदी पंजाबी मिक्स, वाह, कहते ना अज तक किसी नू आजमाया नहीं, जिन्ना प्यार दिता उन्ना पाया नहीं। किसी नू साड़ी कमी महसूस हो जा ना हो, खुदा ने सानू ओदे वर्गा बनाया ही नहीं। हाय क्या बात है, कोई गल नहीं। अपना राजकुमार जी, राकेश कुमार जी, सब दा टाइम होंदा है। देखो जी, हर चीज़ देखो, हर दिन कहिंदे ना सेम नहीं होंदा, पर हाँ हर दिन जिस दिन खुशियां वाला होवे ना उन्हों खुशी की तरह जी लो। वैसे तो असं सारे गम भुल ही जाते हैं उस दिन, जो भी साढ़े कोल खुशी होंगी। वैसे तो हर वक्त खुशी रहे तो वधिया, जे नहीं भी है तुसी खुश रहो तो ज़्यादा बैटर है दोस्तों। वैल, उस तो बाद लिख रहे ने किरण नरूला ग्रीन पार्क कपूरथला तो लिख रहे ने कि दिला चायर आरजे रमनीश सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। किरण जी वेरी गुड आफ्टरनून, ते तुसी बहुत दिन बाद आए हो। हाँ जी, ये तो है जी, वाह जी वाह। मैं जी थोड़ा बस आ गया हूँ बस। चलो थोड़ी आप लाइनस पढ़ते हैं। तुसी लिख रहे हो कि तेरे इकरार की खुशबू नन अभी तक दिल में है। अच्छा जी, तेरे इंतज़ार की महफिल अभी तक दिल में है। वक्त बदल गया, लोग बदल गए, मगर एक तेरा नाम है जो आज भी शामिल दिल में है। धन्यवाद सहित। क्या बात है किरण जी, क्या बात है जी। देखो जी, इधर की लाइन्स पढ़ के ना हू

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल सारे सरोते लिख रहे ने कि सोनू मलेरकोटला तो है ने कि लिख रहे ने कि मिडिल क्लास इंसान ना खुलकर सपने देख पाता है ना खुलकर हार मान पाता है। घर की जिम्मेदारियां उसे हर दिन समझौता करना सिखा देती है वो अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा जीता है। और सच तो यह है सबसे ज्यादा दबाव में वही इंसान होता है जो बाहर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से हर दिन हिसाब लगा रहा।

होता है। क्या बात है जी। देखो कुछ लाइन सदरियां होंदियां कि ना सानू चुप ही करा दिंदियां। ओह शिट यार ए दे बारे असी की बोलिए। बंदा होंदा ना कि नहीं यार ए तां मतलब ना कुछ चीज़ां असी बहुत रिलेट कर लैंदे हां दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे दो लोगों की मेरे दोस्तों की लाइफ इदा ही होगी कि जेडे मतलब रोज़ अपने आप नू ना मतलब बहुत सारिया मजबूरियां विच तां पाल चुके ने, पर हाँ उन्हां नू ना केवल उन्ना प्यार नहीं मिल पाता दोस्तों। देखो मैं दोस्तों यही कहूँगा जेडे साडे सरोते ना, भावें तुसी तकलीफ सह रहे हो नहीं भी सह रहे हो, वैसे तकलीफ तो कोई ना सवे पर ना एक हिंदी आपां ना खुद चों एक इजाजत भी दे दें कि नहीं यार कोई ना आण दे। वैल दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि तुसी हर बंदे नू खुश रखो, तो जेडे सारे सरोते सुन रहे ने वह भी अपने आप नू खुश रखन। तुसी किसे नू खुश रखोगे ना कोशिश है दूसरा भी थानू खुश रखने की कोशिश करेगा। अगर वो अपना होया थोड़ा प्यारा बंदा होया ना थोड़ा तो जरूर वो थोड़े बारे सोचूगा, थोड़े ना गलबात करूगा। और तो साढ़े दोस्त होर आ गए ने, वैल वैल की लिख रहे ने, वाह। नमस्कार सर जी, भुपिंदर सिंह पिंड चीचा अमृतसर। इबादत है तेरी मेरी आदत। आए है क्या बात। अच्छा जी अपना टॉपिक है जी इबादत है ए तेरी मेरी आदत। ठीक है जी, इबादत करता हाँ उस दी कोई टाइम पास नहीं, इबादत करता हाँ उस दी कोई टाइम पास नहीं, ओहदे तो वध के मेरे लिए कोई होर खास नहीं, उस तो बिना जुड़ी हुई मेरी होर, उस तो बिना जुड़ी हुई मेरी होर किसे नाल आस नहीं। कह दियो मेरे सज्जन नूं एक बार तुसी कि भुपिंदर सिंह तेरे तो बिना रहिंदा हताश नहीं। आए है मेरे यह एहसास ओहदे लई हमेशा कायम रहणगे, जिन्ना चिर तक बन जांदा मैं लाश नहीं। ओदा तां मेरे दोस्त ओदा तां मेरा रिश्ता जिवें हुंदा नूह ते मास नहीं। अच्छा जी, ओदा तां मेरा रिश्ता ओदा ते मेरा रिश्ता जिवें हुंदा नूह ते मास नहीं। इस तरह जुड़े भुपिंदर सिंह दे ओहदे नाल होए जज्बात नहीं। गल करे जां ना करे कोई बात नहीं, पर एक बार कर लिया करे दिन विच भुपिंदर सिंह नू भावें याद नहीं, क्योंकि यह जन्म मिलदा बड़ियां मुद्दतां बाद नहीं। इसलिए कर लिया कदे कदे मेरे नाल मिलाप नहीं, भुपिंदर सिंह तेरे लिए लेंदा रहिंदा सदा सावनी। क्या बात है भुपिंदर जी। देखो जदों असी लाइन्स पढ़ते होंगे ना, कोई भी आप कोई भी शायर होवे तां ना असी एक अंदाजा हो जाता कि हाँ यार इस नाल यह चीज़ बीती है, इसने बहुत कुछ सुनिया भी है सिया भी है पर खुश भी है। क्या बात है दोस्तों, तुसीं सुन रहे प्रोग्राम दिला शायर है, मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। लो जी अगली पेशकारी आशा भोसले एंड जगजीत सिंह जी की आवाज़ दे विच। स्टे ट्यून्ड गाइज़।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

दोस्तों, तो इस सुन रहे प्रोग्राम दिला शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल, साडे स्रोत लिख रहे ने, गीत मेरी जिंदगी जरूर ने, पर सब तेरे तो ही वारे ने। वे सुन सूरज दे आशका वे, साडे ख्वाब चन तारे ने। पड़ी कदे दिल ना ला के, वे सब तेरे वांग ही कवारे ने। एना मेरे वांगू तेरे तक आउण लई, तू ता पुगाए असा चाह सब मारे ने। तेनू की पता पुछी कलमा दे कापियां तो, तेनू की पता पुछी कलमा ते कापियां तो, गीता वांग हुंदे हंजू भी ए खारे ने। क्या बात है जी, ये लिखा जी परमजीत जौड़ा, डॉक्टर रणजीत जौड़ा तरन तारण तो, ते गुरविंदर जौड़ा जी भी। ओके जी, तो साढ़े होर लिख रहे ने सरोते, मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा, बसंत सिंह टेलर लिख रहे ने, बेटा लवदीप सिंह जी जसल का भी नाम लिखा जी, और लिख रहे ने कि जिंदगी दे सफर विच औंकड़ा हजारा, सोने सोने फुल्लां नाल हुंदा जिवे खारा। संघर्ष का दूजा नाम है जिंदगी, जिंदगी विच चलती रहनी कदे जित कदे हारा। कामयाब ओही हुंदा है जो औंकड़ा ना लड़न लई रहिंदा सदा तैयारा। जसल सदा रब ते भरोसा रखी, हमेशा चंगा ही है हुंदा जो करदा करतारा। ए तां गल है जी, जो भी हुंदा ना वो चंगे

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: स्वागत है आप सभी का विशेष फोन इन रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, गर्मी के मौसम में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं में है स्किन से जुड़ी समस्याएं। जी हाँ, गर्मी के मौसम में स्किन से जुड़ी अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। तेज धूप, पसीना और अन्य कारणों से स्किन से जुड़ी समस्या जैसे सनबर्न, एक्ने, इन्फेक्शन आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो आज रेडियो डॉक्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन केयर इन समर्स। हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल और आपके एंकर मैं सुजाता रथ। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम पुरी का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। मैम वेलकम।
3: नमस्ते जी।
2: तो मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स, और मैंने जैसे कि बताया कि गर्मी में स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

0: खास करके पसीना बहने के कारण, तेज धूप के कारण
1: जी,
0: या बहुत तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं कि गर्मी में होने वाली आम स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या है मैम?
1: देखिए सुजाता जी, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो इस टाइम पर पसीना बहुत आता है और पसीने के कारण कई चमड़ी की इन्फेक्शन, स्किन की इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जिसमें फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं और ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा होते
0: अच्छा।
1: हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बॉयल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होता है, जिसे हम दाद या रिंगवर्म इन्फेक्शंस कहते हैं, ये भी डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है और अब बारिशें शुरू हो जाएंगी जिसमें हवा में नमी ज़्यादा हो जाएगी, उसके कारण क्या होता है कि पसीना सूखता नहीं है और घमोरियाँ जिनको हम प्रिकली हीट कहते हैं वो हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं जिन्हें हम एक्ने कहते हैं। कुछ चीज़ें जैसे पसीने में बदबू आती है, कई बार पसीना जो होता है रंगीन होता है जो कपड़ों को सोक कर लेता है। धूप में जाने से भी कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जिनको धूप में बाहर जाते हैं काम करना पड़ता है उसके कारण भी कई बीमारियां धूप के कारण हो जाती हैं।
0: तो चलिए मैम, बहुत आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम गिनाए, बहुत सारे इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स के नाम गिनाए, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्किन की और खास करके इस मौसम में, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। और हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर लौटेंगे डॉक्टर पूनम पुरी जी के पास।

0: तो रेडियो डॉक्टर में आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर पुरी, एक मैसेज से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक से है ये, विजयपुरा कर्नाटक से सागर मखीजा, इन्होंने लिखा है हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ स्किन ड्यूरिंग समर्स सो दैट वी डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, सनबर्न एक्सेट्रा।
1: सागर मखीजा जी, आपने पूछा है कि केयर ऑफ स्किन समर्स में कैसे करें जिससे एक्ने ना हो और सनबर्न नहीं हो। देखिए, सनबर्न तभी होगा जब आप धूप में जाएंगे। धूप में जाने से जो धूप की रेज हैं वो मैक्सिमम 7 to 3 o'clock तक होती हैं। तो हम सब पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें 10 to 3 तक धूप में बाहर जाना। और जो भी काम अगर आप अपना काम निपटा सकते हैं तो वो 10 बजे से पहले या 3 बजे के बाद आप करें, ताकि आपको सनबर्न और सन रिलेटेड स्किन डिजीजेस ना हों। दूसरा है कि आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को सन से एलर्जी होती है। और जब सनस्क्रीन लगाना है तो अच्छी मात्रा में लगाएं और आधा घंटा धूप में निकलने से पहले लगाएं, तभी इसका इफेक्ट होता है। और हर 2 to 3 घंटे दोबारा रीअप्लाई करें, क्योंकि पसीना आता है और पसीने से जो है सनस्क्रीन है वो फ्लो कर जाता है। दूसरा आपने पूछा एक्ने के लिए। देखिए, क्या होता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो जो ह्यूमिड वेदर में और में स्वेलिंग हो जाती है और उसके कारण एक्ने बढ़ जाता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि दिन में 2 to 3 बार अच्छी तरह फेस को धोएं और कोई भी ग्रीजी चीज़ या कॉस्मेटिक्स जितना पॉसिबल होता है उसको अवॉइड करें।
0: एक कॉल है मैम। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
2: मैं अहमद एजाज लहरपुरी बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए अहमद साहब, क्या पूछना चाहते हैं?
2: जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पसीना जब निकलता है तो उसके बाद में पैरों की उंगलियों में कुछ खुजलाहट पैदा हो जाती है
0: जी,
2: और ये रहती है करीब करीब 15-20 मिनट बाद, उसके बाद खत्म हो जाती है।
1: अहमद इजाज जी, देखिए पसीना तो आएगा ही है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है। तो यही है कि आप अपने पाँव को धोकर सुखा कर रखिए, जुराब वगैरह ना जितना हो सकता है ना पहनिए, और जूते भी मत पहनिए। अगर आपको जुराब पहना है और शूज पहना है तो कुछ घंटे के लिए पहनिए, और सूती जुराब पहनिए और रोज के रोज धोइए। और कुछ पाउडर्स आते हैं जो पसीना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे चूस लेते हैं, तो उसकी जो है आपको राय एक त्वचा रोगी विशेषज्ञ से लेनी पड़ेगी, ताकि अगर पसीना आता है तो आप वो अप्लाई करें, ताकि आपका पसीना ज्यादा ना आए और आपको तकलीफ ना हो।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: मैम एक और कॉल है। हेलो,
2: नमस्कार।
0: हाँ बताइए, कौन बोल रही हूँ और क्या पूछना चाहते हैं?
3: मैडम मैं पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: हाँ पंजाब से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
3: पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ।
0: हाँ पुरुषोत्तम जी, क्या समस्या आपको?
3: मैडम मैं 70 years लगभग हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे ना पीछे गर्दन के पीछे हो जाते हैं धूप से फिंसने जैसे।
0: अच्छा, गर्दन के पीछे मैम?

0: चिल चिल सा जाता है, स्पॉट से हो जाते हैं जब बाहर निकलते हैं।
1: देखिए पुरुषोत्तम जी, आपकी उम्र 70 साल जैसे आपने बताया और आप धूप में निकलते हैं, मुझे लगता है पसीने के कारण आपको ज़्यादा पसीना आता है और आपकी घमोरियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो यही बताना चाहते हैं कि सूती कपड़े पहनिए और गर्मी से जितना हो सकता है बचिए, पर फिर भी क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है और घमोरियाँ हो जाती हैं, तो इसमें कुछ सूदिंग लोशंस होते हैं जिन्हें हम कैलमिन लोशन कहते हैं, जिनके अंदर सूदिंग केमिकल्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं।
0: तो मैम ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, रैशेस हो जाते हैं
1: जी
0: और खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, तो गर्मियों में यही ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है मैम। और घिमौरियाँ जो आपने कहा कि, तो मैम घिमौरियों का क्या वैसे इलाज है? अक्सर हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि गर्मी के सीजन में घिमौरियाँ हो जाती हैं।
1: देखिए घमोरियाँ इसलिए होती हैं कि पसीना बहुत आता है और जो पसीने के जो डक्ट्स होते हैं, स्वेट डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तो पसीना कम आने देना चाहिए, आप कोई इतनी ऐसे एक्टिविटीज़ मत करिए, जिम मत जाइए, बहुत जिमिंग नहीं करिए, बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, ताकि पसीना ज़्यादा ना आए। सूती कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए, त्वचा को सूखा रखिए और कुछ जैसे मैंने बताया सूदिंग लोशंस होते हैं, वो आप लगा सकते हैं।
0: जी मैम, और मैम आपने एक बात कही कि जो डायबिटिक हैं उनको गर्मी के मौसम में स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए मैम आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: देखिए सबसे पहले तो है कि डायबिटिक मरीज जो होते हैं, स्पेशली जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, उनको अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ त्वचा नहीं, सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। आपकी आईज में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके हार्ट में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके गुर्दों में अफेक्ट पड़ सकता है, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करिए। और दूसरा जो इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फोड़े फुंसी होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेकर उसके अकॉर्डिंगली इलाज कराइए।
0: ओके मैम, तो इस विषय में और भी बातें होंगी पूनमपुरी मैम के साथ, जो आज हमारे साथ है, सफदरजंग हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनमपुरी, और टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। और अब मैम की पसंद का एक गाना सुनेंगे, और ख़ास करके फरमाइश आएगी के की आवाज़ में आज हम गीत सुने, तो ये गाना मैम मैं प्ले कर रही हूँ के की आवाज़ में।

0: बहुत ही खूबसूरत ये गीत हमने सुना केके की आवाज़ में, और मैम के ख़ास करके आज फरमाइश है कि हम केके की आवाज़ में ही गाने सुने। तो डॉक्टर मैम पूनम पुरी जी हमारे साथ हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है सफ़दर जंग हॉस्पिटल में, और आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। तो मैम आपने बताया कि समर्स में जो स्किन की आम समस्याएं होती हैं उनमें है एक्ने, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस एंड घमौरियाँ, एलर्जी कई तरह की। तो मैम आपने बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की बात कही, तो हमें जानना चाहेंगे कि ये जो इन्फेक्शंस हैं इनके लक्षण क्या है मैम?
1: जी देखिए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो गर्मी में ही होते हैं, अक्सर डायबिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। इनमें क्या होता है कि फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। शुरू में ये थोड़े से स्किन से ज़्यादा रेस्ट होते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, इनमें पस पड़ जाता है, और अगर इलाज ना किया जाए तो ये थोड़ा भयानक रूप ले लेते हैं। कई बार इनमें ज़्यादा पस पड़ जाती है और एब्सेस बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फोड़ों का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, और इन एंटीबायोटिक्स को हमें 7 से 10 दिन तक देना पड़ता है। और इसके अलावा ट्यूब्स होती हैं जो हम लगाते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल ट्यूब्स होती हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी स्किन को साफ़ रखिए, रोज़ धोइए, पसीना कम आने दीजिए और सूती कपड़े पहनिए। और जो फंगल इन्फेक्शंस जिसके बारे में आपने बोला, वो अक्सर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जिन्हें हम रिंगवर्म इन्फेक्शंस कहते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ रिंग लाइक लीजन्स हो जाती हैं, पैचेस हो जाते हैं, और ये जो है कहीं भी त्वचा में होते हैं, कई बार सिर पर होते हैं, कई बार शरीर पर अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार नाखून भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इनसे बहुत खुजली होती है। और इनके लिए हमें एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, गोलियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। पर मैं ये ज़रूर आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप बिना एक एक्सपर्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से, इधर उधर या मीडिया के थ्रू या किताबों से या एडवर्टिजमेंट से ऐसे ट्यूब्स ना लगाइए। कोई कोई लोशन लगाया आता है, कोई कोई दवाई लगा देता है, और कई लोग स्टेरॉइड ट्यूब्स लगा देते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन फ्लेयर हो जाती हैं और वो और भयानक रूप ले लेती हैं, और वो कई कई साल तक इलाज करना मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी, कॉलर है मैम। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी,
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून
2: डॉक्टर साहब को भी, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी
2: डॉक्टर साहब, मेरे को ना जब भी धूप में निकलता हूँ, एक तो फेस पे और हाथों पे रेडिश हो जाता है, दूसरा आंखों में तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बहुत गर्म होगी, गॉगल्स ना पहनो तो देख ही नहीं सकता। दूसरा अभी आपने बताया खादी के कपड़े पहनो, तो लाइट कलर के कपड़े पहनने से भी फायदा होता है क्या?
1: जी जैसे आपने कहा कि पहले तो आपका ने कहा कि फेस और हाथ पे दाने हो जाते हैं, ये गर्मी के कारण हो सकते हैं।

0: धूप से एलर्जी हो सकती है, और अगर ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो कुछ घंटे होते हैं और स्किन से थोड़े रेस्ट होते हैं, तो इनको हम छपाकी, धदोड़े या अर्टिकेरिया भी कहते हैं। तो आप धूप से बचिए, 10 से 3 बजे तक धूप में जाना अवॉइड करिए, हो सके तो छाता लेकर जाइए। और अगर ये दाने होते हैं तो आप इन पर सूदिंग लोशंस लगा सकते हैं और कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट्स त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय से ले सकते हैं। कपड़े बेशक खादी पहनिए या सूती के कपड़े पहनिए, लूज फिटिंग कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए ताकि जो आपका पसीना आता है वो आराम से इवेपोरेट हो जाए। और सिंथेटिक क्लोथ्स जैसे हैं नाइलॉन है, सिल्क है, उन्हें इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल ना पहनिए। लिनन जो होता है या खादी जो होता है वो ठंडा देता है, तो ठंडे कपड़े पहनिए और लाइट कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: मैडम एक क्वेश्चन और छोटा सा
0: जी,
1: जो इन दिनों ठंडा पीने से जैसे ठंडाई होती है, लस्सी होती है, उससे भी फायदा होता है कुछ क्या?
0: जी, क्योंकि देखिए पसीना बहुत आता है तो पसीने के साथ हमारा पानी जो होता है, शरीर का पानी भी चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में चाहे छाछ है, चाहे ठंडाई है, चाहे नींबू पानी है, ज़रूर पीजिए ताकि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड ना रहे। जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है उसके ये लक्षण होते हैं कि त्वचा जो है झुलस सी जाती है, डल सी हो जाती है और आपके पाँव और हाथों में एनर्जी नहीं रहती है। तो हर 2-3 घंटे बाद ना केवल पानी पीजिए, जैसे कई फ्रूट्स होते हैं, तरबूज होता है, खरबूजा होता है, इनमें बहुत पानी का कंटेंट होता है, वो जरूर खाइए।
1: थैंक यू मैम।
2: व्हाट्सएप मैसेज है मैम, अमरजीत फ्रॉम चंडीगढ़, इन्होंने लिखा है कि आई एम 58 इयर्स ओल्ड एंड नहाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इचिंग की प्रॉब्लम होती है मैम।
0: जी अमरजीत जी, जैसे आपने बोला 50 साल के हैं और जब आप नहाते हैं तो आपको इचिंग होती है, हो सकता है कि आपको एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया हो, जिसे कहते हैं कि पानी के साथ अर्टिकेरिया होता है, तो इसमें भी आपको, या सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी कई बार अर्टिकेरिया होता है, जो जिसे कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं, तो इसमें आपको त्वचा विशेषज्ञ से राय लेना पड़ेगा और जो वो दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, उनका आपको यूज करना पड़ेगा
2: जी। हेलो
1: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी यथारथ मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब को प्रणाम।
0: प्रणाम जी।
2: हाँ
1: गोविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली 27 से।
2: अच्छा,
1: मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों की स्किन पहले से ड्राई होती है उनको रेनी सीजन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको कौन सी क्रीम या ऑइंटमेंट यूज करनी चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, जरा बताएं।
0: जी देखिए, कई तरह की स्किन होती है, कईयों की नॉर्मल स्किन होती है, कईयों की ऑयली स्किन होती है, कईयों की ड्राई स्किन होती है। तो आपने जैसे बोला कि आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें आपको मॉइस्चराइजर का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और क्योंकि गर्मी है तो हम सजेस्ट करते हैं आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास राय लीजिए, और ग्लिसरीन कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो आप बराबर त्वचा में लगा सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में आपकी त्वचा में परेशानी होती है, तो कई मॉइस्चराइजर्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए।
3: जी मैम नमस्कार, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ मोहम्मद सलमान।
2: हाँ नमस्ते जी, बताइए।
3: मैं ये बोल रहा हूँ मैम, अभी फिलहाल में मेरे जंगासों में दाने हो गए थे, जिन्हें कहते हैं दांत कहते हैं, उन दांतों से थोड़ा सा चरम रोग हो गया था, खाल पतली हो गई।
2: अच्छा,
3: तो मैम ये गर्मी से हुए थे, इनमें कोई सलूशन है इसका आपके पास में, क्या मामला है?
0: मोहम्मद जी देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको दाद हुए थे और वो चमड़ी पतली हो गई, तो मुझे लगता है कि आपने कोई ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल की हैं, आपने ट्यूब्स इस्तेमाल की हैं जिनसे चमड़ी पतली हो गई। चमड़ी इसके कारण पतली नहीं हुई, आपने शायद स्टेरॉयड ट्यूब्स लगाई हैं जिससे चमड़ी एकदम पतली हो गई है और वो स्ट्रेच मार्क्स की तरह होती है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की राय लीजिए, उनको दिखाइए, दूर से कहना मुश्किल है कि आपका क्या इलाज हो सकता है, आप डॉक्टर त्वचा रोग विशेषज्ञ देखकर ही आपको प्रॉपर राय देंगे।
2: जी जी थैंक यू। तो मैम हमने देखा कि आपने जैसे

0: बताया कि कभी भी स्किन की जो ट्रीटमेंट है वो स्वयं ना करें,
1: जी
0: क्योंकि बहुत से हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि ये ट्यूब लगा लीजिए, वो ट्यूब लगा लीजिए, और अक्सर हम ऐसे ही करते हैं कि इनिशियली हम केमिस्ट के पास जाते हैं और या किसी ने कहा तो कोई भी ट्यूब लगा लेते हैं और उससे जो क्या है फ्लेयर अप हो जाता है,
1: जी
0: तो इस तरह से हम कभी भी ना करें
1: बिल्कुल
0: ट्रीटमेंट।
1: बिल्कुल जी।
0: तो मैम, अगर अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या उस कंडीशन में जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, इज इट ट्रीटेबल?
1: जी वो ठीक हो सकती है, पर जो बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है उससे
0: उससे
1: अगर
0: बेहतर।
1: बहुत ज़्यादा टाइम लगे
0: जी जी
1: तो कोई फायदा नहीं होता है। तो बीमारी को जल्दी से त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाकर पकड़ में आए, प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, प्रॉपर इलाज कराइए।
0: तो अब मैम की पसंद का एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, और ये भी के आवाज में, के साथ शिल्पा राव है इस गीत में।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉ

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: और आज के विशेष रेडियो डॉक्टर में हमारा जो विषय है वो है स्किन केयर इन समर्स। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं हूं आपके एंकर सुजाता रथ। मैम, एक व्हाट्सएप मैसेज है देवघर से। कुमार अजय लिखते हैं कि मेरा पसीने से कपड़े का रंग जो है वो काला हो जाता है, इसका क्या कारण है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है?
3: जी अजय जी, जैसे आपने बोला आपका पसीना का रंग काला हो जाता है, देखिए इसको हम या तो पसीने में बदबू आती है या पसीने के रंग पीला भी हो जाता है, कई बार लाल भी हो जाता है, कई बार थोड़ा ब्लैकिश टिंच भी आ जाता है। होता क्या है इसमें जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स आ जाते हैं और उनके कारण जो पसीना है, जो नॉर्मल पसीना है, उसका रंग नहीं होता। और जब पसीना बाहर होता है, कई बार क्या होता है कि हम कपड़े पहनते हैं और कपड़ों के कारण भी वो जो पसीना है कपड़ों में से डाइज निकलती हैं, उससे कारण रंग होता है। पर कई बार क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स में भी कुछ पिगमेंट्स हो जाते हैं एबनॉर्मल, उसके कारण भी पसीना काला हो जाता है। तो आप पसीना ज़्यादा आता है एक्सिलरी फोल्ड्स में और नीचे की तरफ प्राइवेट पार्ट्स में, तो कोशिश करिए वहाँ पसीना नहीं आए। और कुछ एंटी परस्पिरेंट लोशंस होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, वो आप लगा सकते हो, जिससे पसीने के जो डक्ट्स होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एंटी परस्पिरेंट लोशंस का आप स्प्रेज होते हैं, लोशंस होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। और कपड़े भी बदलिए, कॉटन कपड़े पहनिए तो कुछ एक्सटेंड तक आपको मदद मिलेगा।
2: जी, मले घोषाल फ्रॉम सिरामपुर वेस्ट बंगाल लिखते हैं मैम कि कैन यू टेल मी डॉक्टर इज एक्जिमा क्योरेबल, व्हाई इट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक फ्रॉम हैंड टू लेग।
3: देखिए एक्जिमा कई तरीके के होते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है, कुछ एक्जिमास क्यूरेबल होते हैं और कुछ एक्जिमास जैसे एंडोजेनस एक्जिमास है, कई बार हमें उसका कॉज पता नहीं चलता तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, पर वो दोबारा उभर आते हैं तो उसके कारण बार बार हो जाते हैं। बट कुछ तरह के जो एक्जिमास होते हैं जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, हमें किसी एलर्जी है, बिंदी से एलर्जी है, हेयर डाई से एलर्जी है या रिस्ट वॉच के स्ट्रैप से एलर्जी है, उसको हम क्योर कर सकते हैं।
2: जी, कॉलर ले लेते मैम। हेलो।
4: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए।
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बताइए।
4: हाँ जी मैम, ऐसे मेरी मदर है 74 इयर्स की, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो वो उनको ना वो आप कहते हैं जैसे छपाकी सी निकलती है रेड रेड कलर की, उस पर खारिश होती है और वो इंसिडल लेती हैं। इंसिडल काफी सालों से ले रही है पर अब उनको इफेक्ट नहीं होता उसका।
3: जिससे आपने बोला कि आपके मदर हैं 70 साल की, डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको

0: छपाकी होती है, देखिए छपाकी कई सालों से लगता है आपकी हिस्ट्री आपकी बातों से हो रही है, क्योंकि आप इंसिडाल ले रहे हो। इंसिडाल एक अच्छी एंटी एलर्जिक है, पर जब इसका असर नहीं हो रहा तो आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर राय लेना चाहिए। बहुत अच्छी एंटीहिस्टामिनिक्स मार्केट में आ गई हैं जो नॉन सेडेटिंग है, मतलब उनसे नींद नहीं आती है, और वो या तो वो डोज बढ़ाएंगे डॉक्टर, या वो एंटीहिस्टामिनिक्स को चेंज करेंगे, और कई बार एक या दो एंटीहिस्टामिनिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है ताकि आपकी मदर का छपाकी कंट्रोल में आए।
1: हाँ जी मैम, एक्चुअली हमने दिखाया था स्किन डॉक्टर को
0: जी,
1: तो उन्होंने

0: है, और वो या तो वो डोज बढ़ाएंगे डॉक्टर, या वो एंटीहिस्टामिनिक्स को चेंज करेंगे, और कई बार एक या दो एंटीहिस्टामिनिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है ताकि आपकी मदर का छपाकी कंट्रोल में आए।
1: हाँ जी मैम, एक्चुअली हमने दिखाया था स्किन डॉक्टर को,
0: जी
1: तो उन्होंने मेडिसिन जब दी तो इनका ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था वो लेने के बाद और ज्यादा।
0: देखिए नॉर्मली एंटीहिस्टामिनिक्स ब्लड शुगर को नहीं रेस करती हैं, ब्लड शुगर रेस करने के कोई और भी कारण होंगे, पर आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेनी पड़ेगी कि अगर आपको ये एंटीहिस्टामिनिक्स सूट नहीं कर रहे तो दूसरे ग्रुप एंटी एलर्जिक्स के वो देंगे।
1: हम घर में कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए, जैसे उनको कुछ आराम मिले या कुछ घरेलू इलाज?
0: जी नहीं, क्योंकि ये जो है हिस्टामिन केमिकल रिलीज होने के कारण है, और इनमें आपको ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है जिससे कारण छपाकी हो रही है वो ब्लॉक हो जाए।
1: हाँ जी ठीक ठीक है मैम, थैंक यू।
2: एक और कॉलर को ले लेते हैं मैम। हेलो हेलो
3: जी, मेरा नाम क्लिफ्टन अल्मेडा है, मैं गोवा से बात करता हूँ।
2: हाँ जी,
3: मेरा तीन सवाल है। एक सवाल है वो सोराइसिस कैसा होता है, मींस व्हाट इज द कॉज, हाउ इट स्टार्ट्स, देन कैन आई आस्क ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर?
2: नहीं, आई थिंक इट विल बी बेटर यू आस्क ऑल द क्वेश्चंस वन आफ्टर द, फिर वो
3: ओके वन आफ्टर द अदर।
0: हां जी, जैसे आपने बोला सोराइसिस, देखिए सोराइसिस के इस ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में लाल लाल दाने हो जाते हैं, पैचेस, और उनमें सिल्वरी वाइट स्केल्स होता है, और ये काफ़ी क्रॉनिक डिजीज भी बनकर उभर कर आती है। ये सिर पर हो जाती है, सारे शरीर पर हो जाती है, नाखूनों में हो जाती है। इसका कई कारण है, शुरू में कहते थे कि ऑटो इम्यून डिजीज है, पर अब ये कहते हैं कि इसमें कई इन्फ्लेमेशन भी होती है स्किन में, और कई बार इन्फेक्शन भी ट्रिगर करती है, कई बार ड्रग्स भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज होते हैं इसके के लिए, जो एक डॉक्टर की ही समझ में है। अगर हम आपको समझाएंगे तो वो आपके समझ के बाहर होगा, पर आपको यही मानना पड़ेगा कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब हेरिडिट्री भी थोड़ा एलिमेंट होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं एक रोल।
2: हाँ,
3: जी डॉक्टर, ये मेरा बेटे के बारे में था, वो जब 6 साल का था उनको सोराइसिस हुआ था, और फिर डॉक्टर बताया था कि एक सिरप है जो 365 कहलाया जाता है, वो मल्टीविटामिन था और उसपे उनका ठीक होता था।
0: देखिए सिरप 365 के बारे में मैं नहीं जानती, पर बेहतर यही होगा कि सोराइसिस आप डॉक्टर के पास, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, वो असेस करेगा कितनी एक्सटेंट ऑफ सोरियाइसिस है। अगर सोरियाइसिस कम है, 10% से कम बॉडी को इन्वॉल्व करती है, तो ट्यूब्स लोशंस से इलाज हो सकता है, पर अगर 10% से ज्यादा है तो गोलियों का भी इसमें प्रयोग करना पड़ता है।
3: जी डॉक्टर, दूसरा सवाल है, अपना हेरिडिटरी है कि जब खाना खाते हैं हम लोग तो सिर्फ सिर के अराउंड द हेड, द फोरहेड एंड द टॉप ऑफ द हेड पसीना निकलता है। जैसा मेरा बेटा या बेटी जब छोटे थे, जब दूध पीते वक्त उनको भी पसीना निकलता था।
0: देखिए एक कंडीशन होती है, जैसे मैं समझ रही हूँ, जैसे आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, या एक कंडीशन होती है गस्टेटरी हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आपको पसीना ज़्यादा निकलता है। प्रॉबेबली वो ही कारण होगा कि आप कह रहे हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको पसीना आता है, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन भी हो सकता है।
3: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए।
4: मैं दर्शन लोटो फ्रॉम जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ।
2: हाँ बोलिए।
4: हाँ, मेरी उम्र 82 इयर्स है।
2: हाँ जी,
4: और ल्यूकोड्रमा से मेरा शरीर 95% भरा हुआ, तो मेरे को वो कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए?
0: देखिए जैसे आपकी उम्र भी 82 इयर्स है, और आपको ल्यूकोडर्मा काफ़ी लगता है एक्सटेंसिव है, आपने कहा 95% बड़ा हुआ है। देखिए साबुन, ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है, पर हमें साबुन इसमें यूज करना है, क्योंकि हमारी

0: स्किन पर मिट्टी जम जाती है, स्वेट जम जाता है, सीबम ऑयल जम जाता है, तो उसे हमें हटाना है। तो हम यही रिकमेंड, हम कोई साबुन प्रमोट नहीं करेंगे, हम यही रिकमेंड करते हैं कि कोई माइल्ड सोप जो है आप यूज करिए, क्योंकि आपकी उम्र 82 इयर्स है। तो हम कहते हैं कि ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करिए। हम कोई सोप को नाम नहीं लेंगे, पर मार्केट में ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स होते हैं, उनको आप यूज करिए ताकि आपकी त्वचा में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी ठीक रहे। ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है।
1: तो मैम ने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि जो ऐसा कोई भी साबुन जिसमें नमी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस विषय में और भी बातें होंगी पूनम पुरी मैम के साथ, जो आज हमारे साथ हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, और टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स।

0: तो रेडियो डॉक्टर में आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैम एक व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। शशांक फ्रॉम उत्तराखंड, वो लिखते हैं मैम कि इनकी उम्र 22 साल है, इनके हाथों में बहुत स्वेट आता है।
1: जी शशांक जी, जैसे आपके हाथों में स्वेट आता है, मुझे उम्मीद, मेरे को पता है कि आपके पाँव में भी आता होगा, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसमें हाथ और पाँव में पसीना बहुत आता है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी से होता है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, बहुत टेंशन होती है, तभी भी हमारे हाथों पाँव में पसीना आता है। इसके कारण और भी कॉजेस होते हैं जिसमें हाथ और पाँव में पसीना आता है। इसके लिए हमारे पास एंटी स्पर्सपिरेंट लोशंस होते हैं, स्प्रेज होते हैं जो हम लगा सकते हैं। फिर भी अगर पसीना, कुछ गोलियां होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर हाथ और पाँव में पसीना कम नहीं हो तो एक एंटोफोरेसिस मशीन होती है जिसमें हम हाथ और पाँव को पानी में भिगोते हैं और एक बहुत लो करंट पास होता है जिससे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कई इलाज हैं इनके जिसमें हाथ और पाँव में पसीना कम हो सकता है।
0: हरियाणा से जतिंदर जी लिखते हैं मैम कि बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है, तो ट्रीटमेंट क्या किया सकता है?
1: देखिए, बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है तो मुझे लगता है कि सुपरफिशियल बर्न हुआ होगा, फफोले हो गए होंगे। तो इसमें सिल्वर सल्फा डाइजीन क्रीम होती है जो हम हमेशा रूटीनली बर्न्स के लिए देते हैं, वो आप लगा सकते हैं। पर अगर इन्फेक्शन है, पस मवाद पड़ी हुई है, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि बहुत अगर ज़्यादा जला हुआ है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में ज़्यादा निशान ना पड़े।
0: रंजन कुमार फ्रॉम संत नगर बुरारी दिल्ली, मेरे फेस पर ऐसा लगता है मैम जैसे कि ऑयल लगा रखा है बहुत, जबकि मैं बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऑयली स्किन।
1: देखिए, आप मेरे ख्याल से आपकी यंग एज होगी, आप टीनेजर होगे या आपकी कम उम्र होगी, क्योंकि उस टाइम पर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और युवावस्था में जो होता है फेस जो है, आपके ऑयल ग्लैंड्स भी जो होते हैं एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑयली स्किन हो सकती है।
0: जी एक कॉलर है मैम, देखते हैं ये अभी है या। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग सुजाता मैम।
0: हाँ गुड इवनिंग, बोलिए।
2: गुड इवनिंग डॉक्टर।
1: गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल ये है कि मुझे है ना बॉडी के मतलब हैंड पे, लेग पे बॉइल्स है, बॉइल्स, ये बॉइल्स किस वजह से होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब कभी कभी फिश खाते हैं, चाहे वो करी हो या तली हुई मच्छी हो, उससे भी बहुत खुजली होती है, तो ये किस वजह से हो सकती है या इसको अवॉइड करना चाहिए?
1: देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, आपने कहा कि आपके हाथों पाँव में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये गर्मी के कारण ही होते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन में होती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं। आपको गर्मी से बचना है और आपको क्रीम्स होती हैं एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स, उनको यूज़ करना है। और अगर फोड़े ज़्यादा हैं, उनमें मवाद पड़ गया है, तो आपको एंटीबायोटिक भी खाना की ज़रूरत पड़ सकती है।
2: बॉइल्स है, बॉइल्स, एक्चुअली वो बॉइल्स है, बॉइल्स।
1: जी, बॉइल्स ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ये गर्मी के कारण होते हैं।
2: Okay.
1: और दूसरा जो आपने बोला कि आपको फिश खाकर प्रॉब्लम होती है, लगता है आपको फिश से एलर्जी है। बहुत लोगों को फिश से एलर्जी होती है, तो बेहतर यही है कि अगर आपको फिश से एलर्जी है तो आपको फिश अवॉइड ही करनी पड़ेगी।
2: ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू।
0: सुकांता बालो फ्रॉम हिसार हरियाणा, इनका

0: क्वेश्चन है मैम कि गर्मी में क्या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है स्किन पर नहाने के बाद। अक्सर हम सर्दियों में मैम मस्टर्ड सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये गर्मियों में एडवाइजेबल है?
1: देखिए सुकांता जी, हम नॉर्मली एज स्किन स्पेशलिस्ट मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फोटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे पिगमेंटेशन हो जाता है। हम सब अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, या जैतून तेल, ऑलिव ऑयल या तिल ऑयल यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि गर्मी है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, ऑलरेडी त्वचा ऑयली होती है, फिर हम कोई भी ऑयल रिकमेंड नहीं करते।
0: जी मैम, मैम एक लास्ट व्हाट्सएप मैसेज ले लेते
1: जी
0: हैं। 69 ईयर्स ओल्ड हैं शशि फ्रॉम दिल्ली, और जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल की अभी बात की मैम, तो उन्होंने लिखा है कि क्या समर्स में कोकोनट ऑयल को लगाया जा सकता है खास करके फेस पर?
1: देखिए समर्स में मैं नहीं रिकमेंड करती कोकोनट ऑयल को, क्योंकि ऑलरेडी पसीना आ रहा है, फेस ग्रीजी होता है, तो गर्मियों में एटलीस्ट आप अवॉइड करिए कोकोनट ऑयल को।
0: जी, तो मैम अब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि समाप्त होने जा रहा है,
1: जी
0: तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा एक लमसम हमें बताइए कि गर्मियों में हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें, क्या अवॉइड करना चाहिए, और हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए?
1: जी देखिए, गर्मियों में क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, आप वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है काफ़ी लूज़ करते हैं, तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगी कि पानी खूब पीजिए। पानी, प्लेन भी पानी पी सकते हैं, नींबू पानी में नमक भी डालकर पी सकते हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। नारियल का पानी पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी नेचर ने ऐसे बनाए हैं जिनमें खूब पानी होता है, उनका जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, खाइए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लाइट चीज़ें खाइए, बहुत तली हुई स्पाइसी चीज़ें नहीं खाइए, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। बहुत विग्रस एक्टिविटीज़ नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, बहुत दौड़े नहीं, बहुत वेट लिफ्टिंग, जिमिंग नहीं करिए, क्योंकि पसीना आता है और पसीने के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉटन के कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए, धूप 10 से 3 तक ज़्यादा होती है, उस टाइम पर कोशिश करिए कि बाहर स्टेप आउट नहीं करें, और मेंटल स्ट्रेस ना रखें, क्योंकि अच्छी स्किन के लिए मानसिक तनाव भी नहीं होता। योगा करिए, मेडिटेशन करिए और खुश रहिए, यही सबसे अच्छी हेल्दी स्किन के सीक्रेट्स हैं।
0: और तभी कहते हैं मैम कि योगा और मेडिटेशन से जो है वो हमारी स्किन ग्लो करने लगती
1: जी
0: है, नेचुरली ग्लो करने लगती
1: जी
0: है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल, आज हमारी गेस्ट थी और टॉपिक था स्किन केयर इन समर्स। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। शुक्रिया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

दोस्तों दोस्तों तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे होर एंजॉय करवान आ चुका है थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल वेल अपने ना दोस्तों ना कान खोल के हुन राम ना जो मैं थानू कहानियां सुनाऊंगा जिन्हां दी स्टोरीज दसूंगा जिन्हां दी गल्लां बातें दसूंगा ना ये बहुत ही कमाल है दोस्तों। पहला तो मैं सिरलेख दसना चाहना कि ना एक किसान की गल है कि माँ नूं दमा सी पराली साड़न बंद करके शुरू की जैविक खेती, यानी कि उन्होंने पराली ना साड़ी तो उस तो इलावा जी छड़ के जैविक खेती शुरू की। खेतों में पराली के नाड़ नू साड़न नाल जिहड़ा वातावरण प्रदूषण अते कैमिकल युक्त खाण पदार्थों तो लोगों की सेहत नू सुरक्षा नू खतरा है। एक कहना है कि मलसिया की जिहड़ी एक कहानी है ना एक मलसिया के पिंड हुंदल टड्डा दे रहण वाले किसान हरभजन सिंह दी है। वह दसदे हन कि मां नू दमा सी अते खेत विच अग लाउण नाल उठण वाले धुएं तो खांसी परेशानी हुंदी सी, इस करके पराली साड़नी बंद करके आनंद जिहड़ा उन्होंने फैसला लिया। सरकार वल्लों पराली साड़न ते पाबंदी लाउण तो 3 साल पहला ही खेत विच अग लाउणी बंद कर दित्ती सी। इस नाल ना सिर्फ उन्हां दे परिवार दे मैंबरां नू राहत मिली सगों वातावरण संभाल नू वी हुलारा मिलिया। नाल ही खेतां विच बहुत ज़्यादा कैमिकल दे इस्तेमाल तो मन उठ गया। साल 2010 विच घर लई कुछ सब्जियां ते दाल

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना RJ दोस्त रमीश। वेल दोस्तों, प्रोग्राम लव यू जिंदगी सब तो पहला थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है ना। अज हम एक छोटी जी गल तकदीर बारे करन लगा कि ना कि पंजाबी बोली च तकदीर, मुकद्दर, किस्मत, पाग, ये चारे शब्द ना जिहड़े रोज़ वरते जाते हैं। दुख आवे तो कहिंदे हाँ तकदीर माड़ी सी, ब्याह हो जाए तो भाग जाग पए, नौकरी मिले तो किस्मत खुल गई। पर कि यह चारे इको गल हन? जहर शब्द पिछे वखरी सोच, वखरा इतिहास लुकया है। दोस्तों इन्हां शब्दां दी जिहड़ी जड़ फारसी, अरबी ते संस्कृत तक जांदी है। तकदीर दे मुकद्दर अरबी फारसी तो, किस्मत तुर्की फारसी तो, ते भाग संस्कृत भज धातु तो आया है। भाषा बदली, धर्म बदले, पर सवाल उही रहा, इंसान आज़ाद है या बज्जा होया है। दोस्तों असी गलबात करांगे इसी टॉपिक्स ते, जिहदे विच होवेगी तकदीर, मुकद्दर,

तो सुन रहे हो एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का यह रेनबो चैनल है। दोस्तों मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश ते गल करदे हुन मुकद्दर बारे। मुकद्दर भी अरबी कदर है, मुकद्दर भी अरबी कदर तो है, पर इस च जिहड़ी लिखण दा भाव ज्यादा है। फारसी च कहिंदे ना लोए महफूज, एक तख्ती जिते सब कुछ लिखिया पिया है। पंजाबी च असीं कहिंदे हां कि मुकद्दर दा लिखिया कोई मेट नहीं सकदा, पर गुरबाणी इस लेख नूं वखरे नजरिए नाल देखदी है। लिखिया लेखू ना मेटे कोई, जो तूरी लिखिया सो होई। गुरु ग्रंथ साहिब अंग 935 नाल ही गुरु नानक साहिब कहिंदे ने कि किरत करम ते विछोड़े करी कृपा मिलहु राम, अंग 1332। भाव यह है कि दोस्तों की लेख है कि पर करम ते कृपा नाल मेल हो सकता है। सिख फिलोसफी मुकद्दर तो जड़ा मुकद्दर नू हुकम नाल जोड़दी है। हुकम मतलब कुदरत दा नियम, जिवें बीज बोवें

काता फसल उगेगी। एक कदम है पर बीज बीजना तेरे हाथ है। इस तरह मुकद्दर जेल नहीं खेड़ दा मैदान बन जाता है दोस्तों।

0: दोस्तों तुम सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश हूं। गल करते हैं दोस्तों किस्मत दी। किस्मत हिस्सा जो मिलया, किस्मत तुर्की किस्मत तो है, मतलब वंड हिस्सा नसीब। फौज च कहते हैं कि किस्मत वाले नु मौत भी मैडल बना देंदी है। पंजाबी च किस्मत मौका नाल जुड़ गई। किस्मत अजमानी मतलब कोशिश करनी। इत्थे फिलोसफी बदल जाती है, तकदीर ते मुकद्दर च उपर वाला लिखारी है। किस्मत च खेड़ है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब लिखते हैं कि किस्मत की खूबी देखिए, टुट्टे को बना दे, बने को मिटा दे, मिटे को फिर से बना दे। किस्मत पल पल बदलती है, अज राजा कल फकीर। इसलिए पंजाबी कहता कि किस्मत ते रोना नहीं, किस्मत बनानी है। ये शब्द मेहनत कश पंजाबी की सोच नाल मेल खाता है। दोस्तों
1: ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋ,
2: ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है।

वाह जी वाह, वल्ला रे वल्ला वल्ला, नूर हुसन का दीदार हुआ, वल्ला रे वल्ला वल्ला, क्या बात है। पर आज जड़ा मौसम है ना बार, क्या बात है, वखरा ही दीदार हो रहा है सारे मौसम का। एंड इस लोग मौसम का आनंद भी मान रहे हैं। तो असं गलबात कर रहे हैं 102.7 MHz तक आकाशवाणी जलंधर के उत्ते जनाब अवतार गिल जी के बारे, जिन्हां ने बहुत सारिया फिल्मों की, 500 तो वध फिल्मों के काम किया। जेकर उन्हां दी निजी जिंदगी के बारे गल करिए, निजी जीवन के लाइमलाइट तो ज़्यादातर दूर ही रहिंदे ने। जदों काम इन्हां कोल मौजूद होए तो अपना काम करना पसंद करते हैं। और परिवार बारे जेकर ज़्यादा जानकारी की गल करिए, मुख गल्लां जो सामने साडे आईआं ने, कह रहे ने पत्नी अवतार गिल जी दी पत्नी जिहड़ी ने उह घरेलू महिला ने, होम बेकर ने, अक्सर फिल्मी पार्टियां तो समागमां दे विच बहुत घट नज़र आउंदे ने। उन्हां दा इक बेटा भी है जो फिल्मी दुनिया दे विच एक्टिंग तो दूर अपनी निजी जिंदगी दे विच करियर दे विच रुझे हुए ने। भरा दी जेकर गल करिए, अवतार गिल हुणां दे भरा भी, उह भी मुंबई दे विच रहिंदे ने ते पूरा परिवार मूल रूप दे नाल पंजाब दे नाल संबंध रखदा है। कई दहाकियां तो मुंबई दे विच ही उह सैटल है। अवतार गिल जी अक्सर इंटरव्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ

नमस्कार, रात बज गए 8 ते पेश ने एक बार फिर तो एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री वालों ईंधन की बचत की अपील तो बाद केंद्र अते राज सरकारां दे उपावां नूं लागू करना तेज़ कर दिता गया। पंजाब दे राजपाल दे दफ्तर दे विच वी वाहनां दी वरतों च कटौती की गई। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट मंत्री ने कमेटी ने साल 2026-27 की मंडी रुत लई सौनी दीआं 14 फसलों लई घट्टो घट समर्थन मुल MSP विच वाधे नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। इस रुत विच 824 लख मीट्रिक टन तों वध फसलों की खरीद की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 की प्रीख्या नाल संबंधित कथित बेनियमियां अते पेपर लीक दे संबंध विच 5 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात के बोर्ड के प्रीख्या के नतीजे ऐलाने। मानसा की सुपनीत कौर अते पहले नंबर ते, अते लुधियाणा दीआं विद्यार्थिनां सुहानी चौहान अते दिवांशी क्रमवार दूजे अते तीजे स्थान ते रहीआं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब के एक लोड़ींदे नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शेरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार वालों रक्षा बलों के कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों लई राखवांकरण नीति बनाई जाएगी। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों नाल तालमेल करके बटाला दे विच भोमा के दो व्यक्तियों अते कातलों नूं भारत भूटान सरहद तों गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार के NRI मामले के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित

नमस्कार, रात 9 बज गए ते पेश ने एक बार फिर तो एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। आर्थिक मामले बारे कैबिनेट मंत्री कैबिनेट कमेटी ने 2026-27 की मंडीकरण रुत लई 14 सोनी फसलों लई घट्टो घट्ट समर्थन मुल विच वाधे लई मंजूरी दे दित्ती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत नाल कोला अते लिगनाइट गैसीकरण प्रोजेक्टां नूं चार्ज करन संबंधी एक योजना नूं भी प्रवानगी दे दित्ती है।

एक था गुल और एक थी, एक था गुल और एक थी बुलबुल। हुण एक साड़ी पहुंची है साड़े को फरमाइश 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर दे उते। कह रहे ने आदरणीय प्रसारक जी सुप्रेम नमस्कार, फिल्म सावन को आने दो, गीत चांद जैसे मुखड़े पे, बिंदिया सितारा, अनारकली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक जी, पाठक जी, कमल पाठक जी, दीपिका मल्होत्रा जी, गाव्या मल्होत्रा जी, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने हमें फरमाइश भेजी है। सो आइए इनकी फरमाइश को हम प्ले कर देते हैं।

हैं, कह रहे हैं कि दिल चाहता है प्रोग्राम जी मोहब्बत जिंदाबाद। श्रीमान जी कोई भी गीत शामिल कर लीजिए, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। कह रहे हैं कि चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन गुरमन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तो, आदर्शपाल सिंह जोशन ते वैनकूवर कैनेडा तो, रॉबिन सिंह जोशन जी और इन्होंने फरमाइश भेजी है। इन्हों की फरमाइश नू असी प्ले कर देने 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर के उत्ते। मैं थोड़ा मित्र आरजे परविंदर, प्रोग्राम चल रहा दिल चाहता है।

0: पहुंची है, कह रहे हैं कृष्णा पार्क दिल्ली। तो सुखविंदर सिंह जोड़ा जी, फिल्म कहानी किस्मत की किशोर कुमार जी की आवाज में। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, बिल्कुल यखते आने लड़ायो, बारिश का टाइम है कितने तिलक ना जायो। सी वन बिल्कुल 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर देते। एक प्यारे जी फरमाई साढ़े प्यारे जी लिसनर्स दे लई।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे तारा

0: के प्यार का कमाल है, शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया, किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई।
1: एक कुड़ी फंस गई।
2: उफ, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
1: अरे रास्ता।

0: ओ पांडुबा, पोरगी फसली रे फसली।
1: अरे पागल हो गए क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अगा ये जबड़िए लादू नको, ये जबड़िए
3: बिल्कुल जी। अगली फरमाइश साढ़े कोल पहुंच चुकी है, कह रहे ने कि सुप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, रेडियो इज माई फर्स्ट लव, बड़े अरमानों से रखा है, बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में यह पहला कदम गीत है जी, और फिल्म का नाम है जी मल्हार, लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज़ में, गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्डा जी, अलका मिड्डा जी, सधन्यवाद। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फरमाइश भेजी है, और 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे होते, जिन्होंने अजे तक फरमाइश नहीं भेजी है उन्होंने बेनती है कि फरमाइश सानू जरूर भेजो, और उन्होंने फरमाइश में असी पूरा करन दा पूरा पूरा चाह हुंदा है, सानू कोशिश हुंदी है, एंड अगली फरमाइश जिहड़ी है असी पूरी कर दिंदे हां जनाब।

नमस्कार। रात के 10 बज चुके हैं और कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है जी शाम एक गज़ल। मैं आपका दोस्त आरजे परविंदर एक बार फिर से सभी का इस्तकबाल करता हूं। कहते हैं कि नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। शाम

कहते हैं कि अभी होश में आए भी नहीं और बाजियां पलट गईं, होश संभालेंगे तो क्या गजब कर जाएंगे। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम में गजल।

कहते हैं कि जितना देखो उसे थकती नहीं आंखें, जितना देखो उसे थकती नहीं आंखें, वरना खत्म हो जाता है हर हुस्न कहानी की तरह। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल।

कहते हैं कि वफाओं के बदले, कहते हैं कि वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं।

कहते हैं कि हम सफर ना किसी हम नशीन से निकलेगा, हम सफर ना किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शामे गजल।

आप सुन रहे हैं रात के 10:30 बज चुके हैं और कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। एक प्यार का नगमा।

कहते हैं कि वक्त की कैद है जिंदगी, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं। इनको खोकर मेरी जाने जां, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो। 102.7 MHz आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि अजीज उतना ही रखो कि संभल जाए, अजीज उतना ही रखो कि संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। ये कैसा नशा है कि किस अजब खुमार में हूँ, ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है और मैं इंतज़ार में हूँ। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि हम किसी को अपने अमत का हिसाब क्या देते, हम किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

जहां प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहां जाएं जिधर जाएं। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर का यह रेनबो चैनल।

कहते हैं कि राज से शिकायत क्या बस तुम ही से कहना है। राज से शिकायत क्या बस तुम ही से कहना है। तुम ज़रा ठहर जाओ, रात कब ठहरती है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

नमस्कार। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। मैं थोड़ा आरजे परविंदर। अज दी सभा दे साढ़े सारे प्रोग्राम समाप्त होंदे ने, फिर थोड़े नाल सवेरे कल 5:55 ते होवेगी मुलाकात। साढ़े सारे आरजेस होणगे थोड़ी सेवा दे विच हाजर। तद तक लई सानू दिओ इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।